थो रेडियो नेपाल ख नेपाल पासिय समाचार जे उपेश पाखिनी नातिस थौ नेपाल सम्बत चिन्ससौ पिकुदा गुलागा दशमी पोटे खुसी जुया त्रिशुली खुसी वगु खुसी बाल थाना चोपी निम मनुत चिन छनु लिपा हाक्न उद्धार यागुदो विदुर नगरपालिका दस या बेत्रावत्री मिग हिने चन्द्रिका श्रेष्ठ या त सकुशल उद्धार यागु ख सशस्त्र प्रहरी बल 19 नम्बर गुल्म खुसीबा प्रभावित लागा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुमन विकय नेतृत्व वुङ्गु पुचल खुइपेद दुमा श्रेष्ठ या त वेक या छे या पेङ्गुगु तला उद्धार यागु ख गुल्म प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र राउत या कथ खुसी बाल प्रभावित बस्ती या छे या सामग्री चिका गुहाली या त थेङ्गु उद्धार पुचल छे पाके मिसाया स त्यासा त कि हे वेक या उद्धार यागु ख वेक त्याचला थाना चुङ्गु ख थोए दथी मिग माथिलो त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजना छम चिनिया नागरिया तन जीवित हे उद्धार यागु ख नेपाली सेना व कोरिया या डिजास्टर पुचल इनेसिया इले आयोजना 84 टनेल चिनिया नागरिया त उद्धार यागु नेपाली सेना धागु ख ओङ्गु भदौ 10 गते र सुवा या पोटो खुसी खुसी तसङ्ग व खुसी पाल याना उगु आयोजना यक हे क्षति जुगु ख थो निहने मिक शुक्रबार सुरुङ सञ्जय शाह व कबीर महर्जन या तन उद्धार यागु ख वे कपी पिमसित वास याना चुङ्गुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह खुसी बाल पीडित जुपीमा अबुपिन्त थ या खच धका मथुके त इनाब यासे राज्य व सरकार दुगु धैदिगुदु मिग सामाजिक सञ्जाले छगु हसना पिथना दिसे वेक्ल थथे धैदिगु ख वेक्ल पीडा दुपिन्त बिचा दुगङ्क निनेमा ध्या दिसे थज्याकु इले महामुटुको हुइना बुइना मया त न इनाब याना दिल फोटिखुसी वगु खुसी बाल मधु पिन्त सोनिग या नेपामी तपाखे वृहत शोक र्याली कोचागुदो थिथि सङ्घ संस्था तेस मुजा याना थौ आइतबार वृहत शोक र्याली यागु ख मुजा नेवान हेलवा लिसे मानव अधिकारवादी नेता मल्लके सुन्दर नेतृत्व यनादिगु र्याली बसन्तपुर न्याना हनुमान थका मख वङ्ग जनबा अस भट्टाइटी जुया रत्नबार क्या शान्ति पार्टीका थिङ्का श्रद्धाञ्जली सभा ह्युगु ख र्याली दोची मल्याको नागरिक तेसम्पति कागु नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबुया नायन नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ रेडियो नेपाल या त जानकारी ब्यादिको ख रसुवा या पोटेकोसी खुसी बा पीडित पिन्त आर्थिक दाम मुनिगु ज्या जुया चुङ्गुदो प्रधानमन्त्री राहत कोष्य आतक चिन छगु अर्ब न्यागु करोड सिर्व अपोदा मुना चुङ्गुदो थोनि सरकार छगु अर्ब दा उखे पाखे छुए थङ्कुगुदो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पोटेकोसी खुसी बाल मधुपी सशस्त्र प्रहरी या सेजपिन्त नि न्यागु लाग्दा राहत बितेङ्गुदो मधुपी कर्मचारी कल्याण कोष कागु ऋण मिना यागु हो क्याम ह्या या त नेपाल एपिएफ स्कुल या झिगु तङमी तक दाम वाक आँख बोङ्केगु सशस्त्र प्रहरी या सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापा दाइदिगु ख खुसी बाले सशस्त्र प्रहरी या चिन्सोम तनाचुङ्गुदु कास्किया माछा पुस्रे गाउँपालिका एक साँधले देका तगु सुपर सेती जलविद्युत आयोजना उनेगु ल मुइगु झोले खापा जुपी निम वास यागु झोले सिगुदु धनकुटा या निकुद दुम आयुष राई व खोटाङ्गा नि नेद या किसान राई मधुगु प्रहरी धागु ख इलाम या छे दुम श्रीनिद या भक्तबहादुर मगर मणिपाल सिचन अस्ताले वास यनाचुङ्गुदु सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना खुसी बा पीडित या त घाले मलम ते त व मनु त मालिगु उद्धार या त थपी योजना चुङ्गु धाइदिगुदु जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति नुवाकोट या मिग विद्युत रे चुङ्गु मुज्या वेक्न थथे धाइदिगु ख अन नि छोद सुरक्षा फौज या जनशक्ति नित नि न्याग हेलिकप्टर महाकथ ज्याइना चुङ्गु नाप कनादिल फोटेकुसी खुसी बालिपा लुया वगु दोषी वो सोसो वो
पी म मध्ये दो चिव सी म सी म सुरुचि रूप चा ल्हाका व्यवस्थापन यागुदु लुया वोगु सी म मसिकेत डिएनए नमुना संकलन लिसे आवश्यक प्रक्रिया पुङका आतक निस वो नि म मिसा सोस व निया म मिज व पेस व निय सोम संवेदनशील अवस्था मसिकेत थाकुगु सीम व्यवस्थापन यागु प्रहरी धागु ख सी म मसिकेत मधुपिनीगु दो चिव निस व खुई म व थतिपिनी दोची वो चिन्नीगु डिएनए नमुना संकलन यागु केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण कापले जानकारी ब्यादिगु ख वेक या कथन डिएनए लिसे आवश्यक विवरण संकलन लिपा पहिचान मधुगु नाप व्यवहार सेसीम व्यवस्थापन हापङ्गु संशोधन निर्देशिका 2083 कथ उगु सीम जमिने चालहाका सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन यागु ख व्यवस्थापन छोले फुक सीम या संकेत कोड नम्बर जमिन तले ओ चुए तया तगु ख अथे सीम व्यवस्थापन यागु थ्या जिपिएस लोकेसन किपा अभिलेख नक्सा लिसे या विस्तृत विवरण नाप व्यवस्थापन सम्बन्धी फुक विवरण अभिलेखकरण या नातगुदु जमिन तले व्यवस्थापन यागु फुक सीम या किपा डिएनए नमुना संकेत नम्बर हुलिया शनाखत सम्बन्धी विवरण सीम परीक्षण प्रतिवेदन मुचुलका व्यवस्थापन मिति नाप था विवरण सुरक्षित या तगुदु भविष्य छुन परिवार थतिथि थ दुज कथन दाबी यासा उपलब्ध वैज्ञानिक नाप कानुनी दोषी या आधारे मसिका उगु सीम परिवार त लल्यागु प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले कनादिल गोर्खा जिल्ला या हिमे हिमाली भेग या चुमुनब्री गाउँपालिका थेराङ खुसीबाल पेखा छे व छगु ता चुका यङ्कुगुदु थौ सुथे ओगु खुसीबाल चुमुनब्री चार या नामरुङ कानुर्वा ओङ्ग्याल उर्गेन छेउदेन लाक्पा भुटी ओ डोर्जे ग्यालजेन या छे चुका यङ्कुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय धागु ख जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठ या कथ खुसीबा ओगु सिदुगुली मनु त बिसु हुने त तालागुनी मनु त मसिगु धाइ दिगुदु बाजुरे मदिक वगु वा लिपा चलकुटु वना सरमुकाम स्वाइगु साफे मार्तदी सडक खण्ड पङ्ग जुगुदु मिग बनी वगु वा या हुनी मार्तदी या बढी मालिका नगरपालिका नौ या कारागार मुड विनोद स्मृति प्रतिष्ठालय सेलागाड सुवा काँडे चल वङ्गु ख मिग बनी वगु खुसी बा लिपा चल वना रोल्पा या सहित मार्ग पङ्ग बोलङ्गु दु सडक पङ्ग जुगुली दाङ रोल्पा रुकुम जुया हुनेगु यातायातले पङ्ग जुगु धागुदु नेपाल भाषा साहित्यकार शिक्षक सरस्वती रञ्जित तुलाधार उङ्गु शुक्रबार कृष्णा सुनि खुनु यही अस्पताले वास यहाँ मधुगुदु वेक तुलाधर नेपाल भाषा परिषद आजीवन दुज नेपाल भाषा मिसा खलाय आजीवन दुज नेपाल भाषा मङ्क खलाय दुज बाख दबु लिसे थिति साहित्यिक भाषिक शैक्षिक संस्था समुजुया भाषा सेवा नाप भाषिक व शैक्षिक आन्दोलनले सक्रिय भूमिका मिता दिमख मधुम तुलाधर या त श्रद्धाञ्जली देशया नीति नेपाल भाषा एकाडेमी या चान्सल मल्लके सुन्दर समाजसेवी शिक्षाविद हितकरवीर कंशकार नेपाल भाषा मङ्का खलय नाय रमेश मान पिया नेपाल भाषा मिसा खलय नाय धर्मसुभा तुलाधर नेपाल भाषा परिषद नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ प्रतिष्ठा सामी नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागका उप प्राध्यापक सरोज कसा प्राध्यापक डाक्टर चुन्दा ब्रजाचार्य नेपाल भाषा मिसा उपन्यासका रोस शशिकला मानन्दर नेपाल लिपि गुथिया अनिल स्थापित डाक्टर चन्द्रमान ब्रजाचार्य पिन्स लुति झाइदिगो ख नाजामा चित्रकार लिसे उपन्यासकार जगदीश चित्रकार मन्त ओङ्गु शुक्रबार वेक अमेरिका या मेड फोडे चे छद या वैश्य मरुगु ख भाजु चित्रकार नेपा या तसुग नाजाम चित्रकार अमर चित्रकार या ख्या ख थ अबुपाखे चित्र चुएगु सेना कयादिम जगदीश या नापाङ्गु प्रदर्शनी सन् 1989 द इनर आई शीर्षके जुगु ख वेक्ल बेलायते जर्मिन लिसे थिति देशे थगु चित्रकला प्रदर्शनी याना दि थङ्कुगुदु मध्यपुर थिमिया तुलननी त्वाले ठुसिया परम्परागत भैलो प्याक
केनेगो कोचा आगुदो मधेपुर थिमी नगरपालिका पाँचवटा या कुमाननी तुलननी सापारिया खुनु कने खुनु निसे पेनु तग भैल प्याहा केनेगो ख सापारुवा कने खुनु गुलागा दुतिया निसे गुलागा पञ्चमी तग भैल पाख्या केङ्गु ख थुगु प्याखने भैरव खड्ग कुमारी दबदबा व ज्यापुङ्गु ज्यापुङ्ग अर्थात् कपा यापु चाकी त्या थल जुना थिति ताले थो प्याख खुलेको परम्परा दया वु याचुङ्गुदु रुसिया राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नाप मस्क्वे ख ल्हाधुङ्का अमेरिकी सल याइगो पुच युक्रेनिया राजधानी किव वनि तिङ्गुदु अमेरिका रुस युक्रेन ल्वापु कोटेल त कुट याना चुङ्गुदु अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ व जारेड कुस्नरम हिग क्रिमियाले पुटिन नाप थ्योमत सोघौ सल ब्याका दिगो ख युक्रेन राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की अमेरिकी सल पुच थगु देशे उया चुङ्गु नेतादिगुदु थोए दोथुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थुसिया सल सुथा लाइगु थटिका दिगुदु नेपाले वगु खुसीबाले अमेरिका न प्याचे नक्सा ग्वाली या महाधका अमेरिकी सांसद पिन्स विदेश मन्त्री मार्को रुबिया त पौ छोया दिगुदु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टिया नि हेम सांसद पिन्स नेपा या त ग्वाली अपुके मागु व थ तना चोपी ने न्याम नागरिक या त माले त इनाप यागु ख भारत व चीन बेलायत दक्षिण कोरिया देश पिन्स नेपा या त आफ्नो ग्वाली याना चोङली थपिन्स अथे यामा धका इनाप याना दिगु ख थौ लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा या आपलो थासे कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या तराई लागा छु थासे व मधेस प्रदेश या मो थासे नयाना वा वैगु थागुदु कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा कर्णाली प्रदेश या पहाडी लागा व लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी व तराई लागा या छगुनीको थासे आफ्नो वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु मिग सोनिगले नि हेगो फुटी चियागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौ थोए ल्याखे क्वाइगु अधागुदु थौ सुथे न्याता इजुया सुई न्यागु मिनेटे लुगु सुर्द सनिलिया खुता इजुया सुई पेङ्गु मिनेटे भी नेपाल भाषा बुख कोचाल सुभा

जो निनामी भाजु मेजुपी हिउप गुनुग स ज्याजो जना जिरु श्रेष्ठ वे दुन लेथो ज्याज न्यो ज्याकेता जित प्राविधिक कथम गाली ब्याचना दि गुदु उत्तम पाण्डे जिउ न ले निनामी भाजु मेजुपी थौदासा जिन छमा पहा बोना वै गुदु वै क चिनेवा तेगु सभ्यता संस्कृति नापा स्वापुदुमा नापा वै क छमा व्यावसायिक न ख लोक उहामा भाजु किरण स्थापित अले किरण कुमार स्थापित खेक ना धस वेक नपान ठाउँ सहल या गुजु छिउ न छु न कथया गुन्य दुसा चिसम्पङका दिफो 42,711 हो 42,736 अले निनामी भाजु मेजुपिन छिन्सिए सिथो ज्याचो आइतबा पतिको सुतसिया झिगु चिता इजे झिगु मिनेट निसी चिन्छता इतको वैगु ख तर ठाउँ बत्ती च लिपाला त एजुसा न बच्चा थु गेटे दुवाई सिंह दरबारी गेटे दुवाई खके चाहिँ बच्चा कचमच जुया बच्चा लिपाला झिमा पहा बाजु त ठाकुल उज्ञानी छिमा पना जना अनि निनामी बाजु मेजु पिँ थो ज्याज्वेता छिस 98,103 मेगा अर्स नेपाली अङ्क जोना निना दिफु दासा थो ज्याज्वेता छिस अनलाइन या थिथी फ्रिक्वेन्स थिथी वेबसाइट पाखेन छिस हलि निङ्क जोना निना दिफु उज्ञानी छिस www.radionepal.up.np www.radionepalonline वा रेडियो नेपाल यागुए फेसबुक पेज पाखेन छिस हलि निङ्क नानेना दिफु दासा जिन छकनेक झिनेवा तेगु ज्याजो जुल कि जिनेज्यू फेसबुक पाखेन सियरियाना चनागु जुल ओके अन पाखेन छुन कथ्याको सल्लाह सुझाव त दुसा पङ्का दिफु फोन ल्याख 42,711,742,736 थुले दासे आदा झिनेवा तेगु राष्ट्रिय मेने मेना प्रापन सीता लस्कुसै याना चुने दासे थोमे चिसक्क स्यानी

सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रेढाङ्नी दाढेन मुला ङ इन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन र साहसे भाल प्रभावित थुम्ला आपा आमादा राङकाडे याकार्गिक आरे भिबा मानबारी मोइजेन लासियुबान युल्थेन सरकार चुरङबा मिनी थेन छ्याम मुला विशेष सुङबा मुला तिनी सामाजिक सञ्जाल ग्याम सानगिर पिन्सिबान काइब्लोन साहसे राङकाडे याकार्गिक आरे युल्थेन सरकार राङनीला छ्याम मुला विशेष सुङबा हिला भाल ग्याम प्रभावित खेप्पा खुयु मिनिला दुङाल ह्याङसे सेम हेन्सेन गोबा मुला सुङबान काइब्लोन से लुइला अप्ठ्यारो दुइरी दो बाथेनी कादेदा खाइमाई अलापत्र आख्लाबा बिसी ग्रान चास्युबा मुला दुङाल डी मुबा मिनिला ताम्दा थेदोला सुङबान काइब्लोन से चुरङबा धुइरी पीडित थोरी आतोबा टिप्पणी लाबाथेन सु खाबा पोर्री सु पिनबारी माइबा कादेदा सरकार से आख्लाबा बिसी सुङबा मुला भालिछा उद्धारथेन माइबा गे दातेनोन सुरक्षा कर्मी से लाबान मुला सुङबान काइब्लोन से राङला लुइदा जोखिम रि थान्सी तासाई सुरक्षा कर्मी से गे खलाबा आरे बिसी सुङबा मुला भाल प्रभावित थुम्री क्युई ग्याम ताबा ह्याम्ला जोखिम लेबा लिछा सरकार से हाइजा विरुद्धला खोप रसुवा पुइबा मुला भालथेन ढुई लिछा हाइजाला जोखिम लेबा छ्याम रसुवारी हैजा विरुद्धला तोङ निचुई गिक डोज खोप पुइबा हिन्ला जाम्बुलिङ लुई गेन्दुन डब्लुएचओला रोरी किन्बा खोप नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर ग्याम तिनी स्योरी होजा वाना पुइबा मुला बिसी लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन खाङसे पाङबा मुला लुई ब्लोन निशा मेहतासे भाल प्रभावित थुम्री हैजा थेन स्यान्दो ह्याम्ला जोखिम काबारी मान खोप थेन तो बा से कादे योनान पुइबारी सुङबा मुबा भालसे लामा थुङबा क्युइला मुहान थेन क्युई पिनबा ग्ला कादेरी छेती ताबासे हैजा थेन स्यान्दो ह्याम्ला जोखिम लेबा विमान प्रभावित थुम्री मान लबा व्यवस्था पन्दा प्राथमिकता रि थान्बा मुला बिसी लुई ब्लोन खाङसे पाङबा मुला रसुवाला भोटेकोसी भाल लिचा सिबा कादेला सिबा लुइरो घोसेबारी बाँके जोङग्याम मेन्दो चुई ढुला राङला मिनिदा डिएनए नमुना किन्बा मुला भाल ग्याम बाँके जोङला लानन मिनी माबा मुला बिसाम सिबा लुइरो कादेनोन घोसेबारी आखाम्बा ताबासे बाँके ग्याम मेन्दो चुई ढुला राङला दिम थेमेला डी एनए किन्बा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङला एसपी प्रतीत सिंह राठौर से सुङबा मुला रसुवाला भोटेकोसी ताबान खाबा भालसे बाँके जोङला मेन्दो निचुई सोम मिनी दातेनोन माबा मुला दातेधोना मेन्दो सोमला सिबा लुइरो मोसेबा मुला बिसाम मेन्दो सोमचुई निला उद्धार लाबा मुला बिसी बाँके जोङला सिडियो दिल कुमार तामाङ से सुङबा मुला चुराङलासिन रसुवाला भोटेकोसी भाल ग्याम माबा कादेदा माइबा थेन सिबा लुइरो घोसेबारी जोङ प्रहरी गेजाङ गण्डकी ग्याम राङला मिनिला डिएनए नमुना किनबारी तिबा मुला भाल ग्याम सिबा मेन्दो निचुई ढुला सिबा लुइरो चु भदौ चुई ढुला कुनु पोखरा महानगरपालिका चुई ढु लामा चौरला रिरी क्यासी व्यवस्थापन लाबा मुला सारी क्याबा सिबा लुइरो डिएनए नमुना किनबासे सिबा लुइरो घोसेबारी खाबा राङला मिनिला डिएनए नमुना बारी तोबा व्यवस्था झिक्ना लाबा मुला चुराङलासिन रसुवाला भोटेकोसिरी खाबा भाल लिछा त्रिशुली थेन नारायणी गान्धी किनार चितोन्डी स्यापा सिबा लुइरोला व्यवस्थापन डिएनए नमुना किन्बा थेन घोसेबा गे लाबान मुला जोङ प्रहरी गेजाङ प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रभूषण यादव से सुङबा अनुसार दाते धोना चितोन्डी ग्यार्जा सोमसे मेन्दो डुचुई निला सिबा लुइरो स्यापा मुला स्यापा सिबा लुइरोरी ग्यार्जा सोमसे मेन्दो सोमचुई सोमला सिबा लुइरो व्यवस्थापन लासी झिन्बा मुला बिसाम गोर चुइब्ली सिबा लुइरो घोसेसी राङला दिम थेमेसे भोरबा मुला यादव से सुङबा अनुसार तिलमा धोना माबा मिनिला दिम थेमे मेन्दो डुचुई ब्रेला डिएनए नमुना किन्बा मुला रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल थेन लो कोरियाला रोङसा ब्लोन छो ह्युमन गुङ्री नेपाल डी ताबा भोटेकोसी भाल्ला विपत्री रो लाबा ताम ताबा मुला विपतला धुइरी नेपाल थेन डिक्सी गे लाबारी सेम ओन्सी खासुबा रोङसा ब्लोन ह्युन छ्याम्ला कोरियाली मुल्मी थेटमा थेन तिनी रोङसा ब्लोन्डी काठुई ताबा हिन्ला
बागमती प्रदेशला ग्रेन ब्लोन किरण थापा मगर्से प्रदेशला भौतिक पूर्वाधार ब्लोन काङ्ला पूर्वाधार विकास गेजाङ नुवाकोटला रोरी विदुर नगरपालिका गा देवघाटली तुइन थान्सी सेङ्बा मुलाबिसी सुङ्बा मुला चुथुम्री भदौ चुइला कुनु रसुवाला भोटे कोशी ताबन खाबा भाल्चे त्रिशुली क्याम्साङ निबारी खाबारी समस्या ताबन खाबा मुला रसुवाला भोटे कोशी गान्धीरी चु भदौ चुइला कुनु खाबा भाल ग्याम सिबा कादेरी ग्याजा निसे मेन्दो ब्लिची भ्लिला सिबा लुइरो टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज भाबा मुला अस्पताललाई फरेन्सिक ल्याब घ्रेनपो गोपाल चौधरी से भाल्दी सिबा कादेरी ग्याजा निसे ब्लिची भ्लिला सिबा लुइरो टिचिङ अस्पताल डी भाबा मुबाबिसी सुङबा मुला अस्पताल डी बाबा सिबा लुइरो री ग्याजा गिक्से डुचुइ गिक सिबा लुइरोला व्यवस्थापन लाबा मुला चुराङ लासिन मेन्दो निचु भिला सिबा लुइरो मोसेसी दिम थेमेसे बोर्बा मुला बिसी डाक्टर चौधरी से सुङबा मुला दाते गाचुइ कु सिबा लुइरो अस्पताल दिन थानबा मुला रसुवाला भोटे कोशी गान्धीरी चु भदौ चुइला कुनु खाबा भाल्डी घाइते ताबा कादे मेन्दो गाचुई दा उद्धार लासी याम्बु बाबा रे राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर ग्याम तिनी धोना मेन्दो सोम्ची भ्रे मान लाबा लिचा डिस्चार्ज ताबा मुला जोङ प्रहरी परिसर याम्बुला सुङबोन्थेन प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर थापा से सुङबानसार भाल्डी घाइते ताबा मेन्दो गाचुई दा मान लासी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर रि थापा मोबा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर रि दातेनोन मेन्दो चुइनी घाइतेला मान लाबन मुला भोटे कोशी भाल से लामा रसुवा थेन नुवाकोटला जलविद्युत आयोजना कादेला सुरुङरी फस्तीबा कादेला तिनी नोन उद्धार लाबन मुला नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी थेन नेपाल प्रहरी थेन विज्ञ कादेला टोली से तिनी रसुवागढी त्रिशुली सोम ए त्रिशुली सोम बी चिलिमे थेन त्वचा त्रिशुली गिक जलविद्युत आयोजना रि माइबा थेन उद्धार लाबा लाबन मुला विशेष सैनिक जन सम्पर्क थिएन सूचना निर्देशनालय से पाङबा मुला रसुवागढी जलविद्युत आयोजना रि खर्दीबा उद्धार टोली से विद्युत दिमला डुछा तलारी दोषी माइमा होजा दुईरी खालाइनोन आश्यापनी बिसी सेनासी पाङबा मुला भदौ चुई रि खाबा भोटे कोशीला भाल्से रसुवा नुवाकोट धादिङ थेन गोर्खाला गोर्गा चुई थुङबा क्युइला आयोजना प्रभावित ताबा मुला भाल ग्याम नोङबा आयोजना विवरण अनुसार छो आछो करोड डुचुई भ्लिला क्षति ताबा भानबा मुला थुङबा क्युइ थेन ढल व्यवस्थापन विभाग से पाङबा अनुसार भाल ग्याम मोकोन बिमा लाना प्रभावित नुवाकोट रि गोर निचुई नि थुङबा क्युइला आयोजना क्षति ताबा मुला नेपाल चीन मुरथुम ग्यामा भोटे कोशी गान्धीरी खाबा भाल्से लामा रसुवारी ग्रेन क्षति ताबा मुला लेहेन्दे स्योङ ताबान खाबा भाल्से धाते धोना जोङरी तोङ गिक ग्याजा सोमसे मेन्दो चुई सोम मिनिला सोमोन उद्धार लाबा मुला बिसामा तोङ सोमसे मेन्दो निस चुई गिक धाते नोन माबा मुला जोङला रो सिडिओ थेन सूचना अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी से सुङबा अनुसार भाल थेन ढुइसे लामा तोङ गिक ग्याजा निसे मेन्दो निचुई निस नेपाली थिएन मेन्दो ब्रेचुई डु स्यान्दो ह्युला मिनिदा सुरक्षा कर्मी थिएन नाम्साला मिनिला रोरी उद्धार लाबा मुला बालचे लामा अलपत्र ताबा थिएन गोसाई कुण्ड थुम्री रोगदिबा ग्याजा गिक्से मेन्दो ब्लिचुई घा मिनी थिएन नाम्साला मिनिदा हेलिकप्टर ग्याम नुवाकोट थिएन याम्बुरी भाबा मुला जोङरी लानन मिनी कदे धाते धोनान सम्पर्करी खाबा आरे लो गोर्खाला चुम नुम्री गाउँपालिका ब्ली नामरुङ ला बुढी गण्डकी थेन थेराङ स्योङला भाल्से गोर्नी चाम थेन गोर्नी जलविद्युत आयोजना भ्योङना लाबा मुला दुई छ्याम खाबा भाल्से मनास्लु ला गोर्नी चाम थेन गोर्नी जलविद्युत आयोजना भ्योङना लाबा मुला बिसी लाक्पा ढुन्डुप लामासे सुङबा मुला विद्युत आतामा भत्ती सञ्चार सेवा थिएन विद्युत ग्याम सेङबा मोकोन सेवा भन्द ताबा मुला चुराङला जोङला हिमाली थुम्ला चुम नुम्री गाउँपालिका ब्ली थेन निरी गोर्ब्ली दिम थेन गोर्की चाम भ्योङना लाबा मुला तिनी स्योरी खाबा भाल्चे चुम नुम्री ब्लिला नामरुङ कार्बर्नु
ओङ्ग्याल उर्गेन छोदेन लाक्पा भुटिथेन दोर्जे ग्यालजेन लाधिम ब्योङना लाबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ से पाङबा मुला चुमनुम्री गाउँपालिका ला चोहो निमा लामासे चु स्योङ बुढी गण्डकी थेन धोङबा ताबासे बुढी गण्डकी घान्दी गाम्री चिबा मिनी कादेदा सतर्क ताबारी मोइजेन लासिउबा मुला पृथ्वी राजमार्गला धादिङला कृष्ण भिर्दी सडक ग्यालाम भास्तीबा लिचा सोमरारी स्यान्दोनोन ग्यालाम ग्याम तोङ ब्रेचुई निस बिमा लाना सिलिन्डर ग्यास याम्बु भाबा मुला नेपाल आयल निगम से पाङबा अनुसार लोलो लोलो गोर चुई ब्रेक कम्पनी से बारा पर्सा मकवानपुर चितोन नवल परासी धनुसाथेन महोतरी मुबा उद्योग ग्याम ग्यास भर्दिसी तोङ ब्रेचुई निस ग्यार्जा ब्रेसे गोर निश्चुई निस सिलिन्डर याम्बु भाबा हिला भोटेकोशी गान्धीरी चु भदौ चुइला कुनु ताबा भाल ग्याम प्रभावित थेत्मा ला सदस्यदा धुलीखेल अस्पताल से दिङ घिक धोना टाङ्गा आकिन्ना लुई सेवा पिनबा ताबा मुला अस्पताल से तिनी कागिर छिपान भाल ग्याम प्रभावित थेत्मा से लुई सम्बन्धी समस्या थिएन नोर भार नोर नातो बा धुइदा गोसी थेत्माला सदस्यदा दिङ घिक धोना टाङ्गा आकिन्ना मन लाबा निर्णय लाबा हिन्ला बिसी पाङबा मुला स्यान्सिबानो मोबाइल सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

किया गया है। अस्पताल के मुताबिक चंद लाशों का पोस्टमार्टम करना बाकी होने की वजह से उन लाशों का बंदोबस्त पोस्टमार्टम के बाद ही किया जाएगा। रसुआ के भोटेकोशी नदी में इसी बहादुर दस गते आए सैलाब में पड़कर जख्मी होने वाले 50 अफराद में से 38 अफराद को इलाज के बाद ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिली पुलिस अहाता काठमांडू के तर्जुमान SP दान बहादुर थापा के मुताबिक सैलाब में पड़कर जख्मी हुए 50 अफराद को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया था, जिनमें से 12 जख्मियों का अब भी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। रसुआ के भोटेकोशी सैलाब के बाद लापता या मरने वालों की लाशों की शनाख्त के लिए बांके ज़िला से 16 रिश्तेदारों का DNA नमूना लिया गया है। रसुआ भोटेकोशी और तिरशली कॉरिडोर में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से ज़िला बांके के बहुत से अफराद लापता हुए हैं, तो मिली लाशों में से कई लाशें टुकड़ा टुकड़ा हो जाने की वजह से शनाख्त करना मुश्किल होने के बायस बांके से 16 रिश्तेदारों का DNA नमूना लिया गया है। रसुआ के भोटेकोशी सैलाब के बाद ज़िला बांके के 23 अफराद अब तक लापता हैं। ज़िला बांके के DSP दिल कुमार तामंग ने बताया कि अब तक 3 लाशों की शनाख्त करके उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है, जबकि 32 अफराद को बहिफाजत बचाया गया है। रसुआ के भोटेकोशी में आए सैलाब के बाद त्रिशूली और नारायणी नदी किनारे से चितवन में मिली लाशों के बंदोबस्त और DNA का नमूना लेने के साथ साथ शनाख्त करने का काम भी जारी है। जिले पुलिस दफ्तर के DSP चंद्रभूषण यादव के मुताबिक अब तक चितवन में 362 लाशें मिली हैं, जिनमें से 333 लाशों का बंदोबस्त किया जा चुका है, तो 14 लाशों की शनाख्त करके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है। DSP यादव के मुताबिक भादो 20 गते तक लापता रहे अफराद के रिश्तेदारों में से 68 अफराद का DNA नमूना भी ले लिया गया है। उसी तरह भोटेकोशी सैलाब में लापता अफराद की तलाश और लाशों की शनाख्त के लिए जिली पुलिस दफ्तर गंडकी में भी रिश्तेदारों का DNA नमूना लेना शुरू कर दिया गया है। सैलाब में पड़कर मरने वाले 76 अफराद की लाशों को इसी भादो 16 गते पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 लामाचौर वाके जंगल के इलाके में जेर जमीन बंदोबस्त किया गया था। जेर जमीन बंदोबस्त की गई लाशों का DNA नमूना लिए जा चुकने की वजह से लाशों की शनाख्त की गर्ज से आने वाले रिश्तेदारों का DNA लेने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। पृथ्वी शाहरा के तहत धादिंग के कृष्णभीर में सड़क धंस जाने के बाद पिछले 3 दिनों में मुतबादिल रास्ते से 87,000 से ज़्यादा गैस सिलेंडर काठमांडू लाया गया है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुख्तलिफ 18 कंपनियों ने 12 परसा मकवानपुर चितवन नवलपरासी धनुषा और महतरी में रही सनतों से रिफिलिंग करके 87,877 सिलेंडर गैस काठमांडू लाया गया है। भोटेकोशी नदी में इसी भादो 10 गते के सैलाब मुतासर खानदान के अफराद को धुलीखेल अस्पताल 1 साल तक मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करेगा। अस्पताल ने आज एक बयानिया जारी करते हुए सैलाब मुतासर खानदान को सेहत में मसला और माली बोझ भी बर्दाश्त करने के हालात को ध्यान में रखते हुए खानदान के अफराद को 1 साल तक मुफ्त इलाज फराहम करने का फैसला किए जाने की जानकारी दी है। बयानिया के मुताबिक मुफ्त तिब्बी खिदमात हासिल करने के तरीक़ेकार, ज़रूरी कागजात और तफसीलात की जानकारी जल्द ही मंजर आम की जाएंगी। शुमाली गोरखा के चुमनुबरी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 नामरुंग वाके बूढ़ी गंडकी और थेरांग खोला नदी के सैलाब ने 2 पुलों और 2 पनबिजली मंसूबों को बहा दिया है, जिसकी वजह से चुमनुबरी के बाशिंदों को मुश्किलात का सामना है। मकामी बाशिंदा लाखपा डुंडू प्लामा ने बताया कि तूदे के साथ आए सैलाब ने मनासलू ट्रेड किंग रूट पर 2 पुलों और 2 पनबिजली मंसूबों को बहा दिया है। पनबिजली मंसूबा बह जाने के बाद बिजली की फराहमी बंद होने से बत्ती, नशरियाती खदमात और बिजली से चलने वाली तमाम खदमात ठप हो गई हैं। साथ ही आज सुबह थेरांग खोला नदी में आए उस सैलाब ने 4 घरों को भी बहा दिया है। ये नदी बूढ़ी गंडकी नदी में मिलने की वजह से बूढ़ी गंडकी के साहली इलाकों के बाशिंदों से खबरदार रहने की अपील की गई है। रसुआ के भोटेकोशी नदी में आए तबाहकुन सैलाब से रसुआ, नुआकोट, धादिंग और गोरखा के 55 आबी नोश मंसूबे मुतासिर हुए हैं। इन आबी नोश मंसूबों को सैलाब से पहुँचे नुकसान की इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक 64 करोड़ रुपये बराबर का नुकसान पहुँचने का अंदाज़ा लगाया गया है।
صوبہ باغمتی کے وزیر اعلیٰ کرن تھاپا مگر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی وزارت مادی بنیادی لوازمات کے تحت مادی بنیادی ترقیاتی دفتر اور نواکوٹ کی فعال شراکت پر بدور نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 دیوی گھاٹ میں روپ وے کو استعمال میں لایا گیا ہے۔ اس علاقے میں اسی بھادو دس گتے کے رسوا کے بھوٹے کوشی میں آئے تباہ کن سیلاب نے پل بہا دینے کے بعد

ई रेडियो नेपाल थिक रविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद भवन परिसर में जेएनजी शहीद स्मारक पार्क तथा शालिक आ स्तंभ के शिलान्यास कयल गेल अछि। गृहमंत्री सुदन गुरुंग, पूर्वाधार मंत्री सुनील लमसाल आ जेएनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजक ज्येष्ठ सदस्य वासुदेव जोशी संयुक्त रूप में एहि संरचनाक शिलान्यास कयलनि। एहि क्रम में गृहमंत्री गुरुंग जेएनजी पुस्तक मांग संबोधन करबाक लेल हमसब स्वयं लागि पड़ल बतौलनि। हमसब जे कसम खेने छी एहि के पूरा करब, ओ कहलनि। बीतल वर्ष भादव 23 गते जेएनजी आंदोलन भेल छल। आंदोलन मार्फत तत्कालीन सरकार विघटन व पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में चुनावी सरकार गठन भेल छल। बीतल फागुन 21 गते के प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पश्चात वर्तमान सरकार गठन भेल। यही भादव 18 गते के मंत्रिपरिषद बैठक जेएनजी शहीद दिवस के अवसर पर भादव 23 गते नेपाल देश भर सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय कलक अछि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल आ गणतंत्र कोरियाक परराष्ट्र मंत्री छो ह्युन बीच नेपाल में हाल ही आयल विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ पश्चात जारी खोज उद्धार तथा राहत कार्यक सदैव आ द्विपक्षीय संबंधक विविध विषय में छलफल भेल। परराष्ट्र मंत्रालय में आई भेल द्विपक्षीय वार्ताक क्रम में यही भादव 10 गते भोटेकोशी नदी में आयल विनाशकारी बाढ़ पश्चात बेपत्ता भेल गणतंत्र कोरियाक नागरिक सभक खोजी तथा उद्धार कार्यक विषय में सेहो गंभीर छलफल भेल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। ओहि अवसर पर परराष्ट्र मंत्री खनाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खोज तथा उद्धार कार्य में सहयोग पहुँचबाक लेल अंतर निकाय द्रुत प्रतिकार टोली तथा कोरियाक डिजास्टर रिलीफ टीम पठाओल गेला पर गणतंत्र कोरिया सरकार प्रति आभार व्यक्त कयलनि। ओ बाढ़ पीड़ित नागरिकक लेल गणतंत्र कोरिया सरकार सँ उपलब्ध कराओल गेल मानवीय सहायता तथा राहत सामग्री प्रति धन्यवाद व्यक्त कयलनि। विपद पछि के पुनर्निर्माण के नेपाल सरकार उच्च प्राथमिकता में राखल उल्लेख करैत मंत्री खनाल भविष्य में एहन विपद सँ कम क्षति हेबासन स्थायी आ सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा बिल्ड बैक बेटर अवधारणा अनुसार पुनर्निर्माण आगू बढ़ेबाक बात बतौलनि। एहि कार्य में गणतंत्र कोरिया सँ निरंतर सहयोग प्राप्त हेबाक विश्वास सेहो ओ व्यक्त कयलनि। भेंटवार्ता में गणतंत्र कोरियाक परराष्ट्र मंत्री ह्युन नेपाल में विपद पश्चातक पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापनाक प्रयास में अपन सरकार से आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेबाक लेल इच्छुक रहल बताओल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। जलवायु परिवर्तनक कारण नेपाल सन देश भोग पड़ल जनधन तथा पूर्वाधारक क्षतिप्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदायक ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहल उल्लेख करैत मंत्री ह्युन जलवायु परिवर्तनक असर आ एहिसँ सृजित विपद के विषय में विश्व समुदाय के थप संवेदनशील बनेबाक लेल नेपाल आ गणतंत्र कोरिया सहकार कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। ओ संयुक्त राष्ट्र संघे जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन सहितक अंतर्राष्ट्रीय मंच में जलवायु परिवर्तनक कारण नेपाल सन देश भोग पड़ल चुनौती आ क्षति के विषय में संयुक्त रूप में आवाज उठाओल जेबाक धारणा व्यक्त कयलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा भोटेकोशी बाढ़ सँ प्रभावित सभक लेल राहत सामग्री आ व्यवस्थापन में स्रोतक कमी नहि होमय देबाक बात बतौलनि। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा ई बात बतबैत देश में अपकल्पनीय बाढ़ आबि भारी क्षति भेलाक बावजूदो सरकार सब तरहक पुनर्स्थापना काज में गंभीर भ लागल बतौलनि। बाढ़ प्रभावित सभक लेल राहत सामग्री कमी नहि रहल, व्यवस्थापन में स्रोतक कमी नहि होमय देल गेल स्पष्ट कयलनि। नुआकोट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य सेहो रहल, ओ राहत वितरण में कोनो कमजोरी नहीं रहल बतौलनि। बाढ़ आयल दिन भादव 10 गते स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर दिन राति खटल आ सरकारक उपस्थिति में कमी नहीं होमय देल गेल बतौलनि। अखन नेपाल के जलवायु नहि आ न्याय चाहल, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर बनबाक बात ओ आग्रह कयल उल्लेख अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति गगन कुमार थापा आ नेता डॉक्टर शेखर कोइराला बीच आई भेंटवार्ता भेल अछि। भेंटक क्रम में हुनका लोकनिक बीच कांग्रेस पार्टी भीतरक आंतरिक समस्या समाधानक विषय में बातचीत भेल, डॉक्टर कोइरालाक सचिवालय जनौलक अछि। नेता डॉक्टर कोइराला एखन देश लोकतंत्र आ राष्ट्रीयता कठिन अवस्था में रहला कारणे कांग्रेस पार्टी एक मजबूत हेबाक संग विकल्प नहि रहल कहैत एहि के लेल अपन दिस जते त्याग करबाक लेल हम तैयार करबाक तैयार रहल प्रश्न कयलनि। जवाब में सभापति थापा स्वयं पार्टी एकताक पक्ष में रहल बतौलनि। हुनका लोकनिक बीच एहि भादव 10 गते बुधदिनक दिन नेपाल चीन सीमाना रसुआ में आयल विनाशकारी बाढ़ आ तकर बाद रसुआ नुआकोट धादिंग सहित जिलाक पछिला अवस्थाक संबंध में सेहो छलफल भेल छल।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भीतर राजगुठी अन्तर्गत रहल पोखरि तथा एहि क्षेत्रमे रहल अतिक्रमण हटेबाक लेल गुठी संस्थान सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाके 7 दिनक सूचना जारी कयलक अछि। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरधाम एक सार्वजनिक सूचना जारी करैत राजगुठीक पोखरि तथा एहि क्षेत्रमे रहल अनधिकृत रूपमे संरचना निर्माणक भोग चलन भऽ रहल कहैत एहन संरचना हटेबाक लेल निर्देशन देलक अछि। संस्थान देवान पोखरि, चन्द्रकूप, मधमासर, रुक्मिणीसर, बिरालसर, बिराही, गेनही पोखरि, ठाढ़ी पोखरि, लवकी पोखरि, रजौल, कपालमोचनीसर, पुरन्दरसर, लवकी पोखरि 0 माइलसँ उत्तरपुर, लक्ष्मणसर, बलरामसर, पापमोचनीसर, अग्निकुण्ड, सीताकुण्ड आ बिहारकुण्ड सहितक पोखरि तथा एहिके मोहारपर अतिक्रमण भेल जनौलक अछि। सार्वजनिक सूचना मार्फत संस्थान अतिक्रमणक बनाओल गेल अनधिकृत संरचना 7 दिन भीतर हटाकऽ राजगुठीके सम्पत्ति संरक्षणमे सहयोग करबाक लेल सम्बन्धितसँ आग्रह कयलक अछि। तोकल गेल समय भीतर अतिक्रमण नहि हटौलापर प्रचलित कानून अनुसार कार्यवाही करबाक चेतावनी सेहो एहि सूचना मार्फत देल गेल अछि। एहि बेर गुठी संस्थान सार्वजनिक सूचना जारी करैत समय सीमा तोकल गेलक बाद अतिक्रमण हटेबाक प्रक्रिया व्यवहारमे सेहो लागू भेल देखल गेल अछि। एहिसँ पहिने एहि भादव 6 गते जनकपुरधाम स्थित 7 टा पोखरिके मोहार सभक अतिक्रमण कऽ रहल एकरा खाली कराओल गेल छल। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व रहल सरलाहीके नारिमन ताल परिसरमे पुनः पर्यटकीय गतिविधि बढ़ैत गेल अछि। जैविक विविधता युक्त एहि तालके किछु समय पहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय देशक 100 पर्यटकीय गंतव्यमे सूचीकृत कयने छल, मुदा आंतरिक व्यवस्थापन आ तालक पर्यटन प्रवर्धनमे व्यवस्था भेलासँ अधिक समयसँ सुनसान प्राय बनल तालमे पुनः चहल पहल शुरू भेल अछि। 52 बीघा क्षेत्रफल रहल एहि नारिमन ताल चन्द्रनगर गाँवपालिका वार्ड नंबर 6 आ 7 मे फैलल अछि। चारू दिशा अतिक्रमणके चपेटामे रहल तालके एखन 35 बीघा क्षेत्र पानिके सतह रहल अछि आ बाहर भागक दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमे मिथिला कलाघर, चिल्ड्रेन पार्क निर्माण भेल अछि। रसुआक भोटे कोसी नदीमे भादव 10 गते आयल बाढ़िमे पड़िकऽ जान गुमनिहार मध्य 244 गोटेके लास त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमे आनल गेल अछि। अस्पतालक फोरेंसिक लैब प्रमुख डॉक्टर गोपाल चौधरी बाढ़िमे पड़िकऽ जान गेल मध्य 244 गोटेक लाख एहि लाश शिक्षण अस्पतालमे आनल गेल जानकारी देलनि। अस्पतालमे आनल गेल 244 लाश मध्य 161 गोसरेके अस्थायी व्यवस्थापन कयल गेल अछि। एहिना 24 गोटेके पहचान भेलाक कारणे परिवार तथा अपनके जिम्मा लगाओल गेल डॉक्टर चौधरी बतौलनि। एहिना हाल 59 लाश अस्पतालमे रहल अछि आ किछु लाश सभक पोस्टमार्टम करबाक बाकी रहलाक कारणे पोस्टमार्टम पश्चात ई लाशके व्यवस्थापन कयल जेबाक अस्पताल जनौलक अछि। भोटे कसी नदीमे गेल बाढ़ि सङ्गे सड़क, पुल सहित भौतिक संरचना ध्वस्त भेलाक बाद मित्र राष्ट्र चीनक केरुङमे भण्डारण कयल गेल व्यापारिक सामान कोरला नाकासँ आनल जायवला भेल अछि। हिम, भूस्खलन सहित लहंदे खोला होइत भोटेकोसीमे गेल अकल्पनीय बाढ़िसँ रसुआगढ़ स्थित दुनू दिशक सरकारी कार्यालय सहित सड़क मार्ग धौलाक बाद केरुङके गोदाममे रहल 400 कंटेनरसँ अधिक सामान वैकल्पिक सड़क मार्ग प्रयोग कऽ ढुआनी करबाक काज शुरू भऽ चुकल, मूसा ट्रांसपोर्ट जनौलक अछि। चीन नेपाल सीमा निकट हिमाली क्षेत्रमे बीतल भादव 10 गते आयल विनाशकारी बाढ़िक कारण चीन दिस मृत्यु भेनेहरक संख्या 43 पहुँचल अछि। उद्धार तथा खोजी अभियानमे संलग्न अधिकारी सब ई आइ पुष्टि कयलक अछि। पछिला गणना अनुसार हिमालय क्षेत्रमे गेल भूस्खलन आइसँ हिमनदीमे आयल बाढ़िक कारण 43 गोटेके मृत्यु भेल आ 519 गोटेके बेपत्ता भेल अछि। भूस्खलनसँ आयल बाढ़िसँ चीन आ नेपाल मिलाकऽ दुनू देशमे लगभग 1400 गोटेके जान लेलक अछि। एहिना 5500सँ अधिक बेपत्ता भेल जनौलक अछि। बाढ़िक कारण हजारो घर सबके बाढ़ि दहला पर डुबानमे पड़ला पर 10,000 व्यक्ति विस्थापित बनल अछि। बाढ़िक कारण नेपाली क्षेत्रमे रहल विद्युत गृह, सड़क संजाल, पुल पुलेसा, घर तथा खेती योग्य जमीनमे पहुँचल क्षति सैकड़ो अरबसँ अधिक पहुँचबाक प्रारंभिक अनुमान कयल गेल अछि। रेडियो नेपालसँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रसुआ की भोटे कोशी में आई बाढ़ के बाद अब तक 1351 लोगों के मिल चुके हैं शव। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने सभी शक्तियों को परिचालित कर दी है, संचार मंत्री डॉक्टर तिमल सिन्हा का कथन। और इंडोनेशिया में अचानक काकराताओ ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण 712 उड़ाने हुई रद्द। अब समाचार विस्तार से। रसुआ की भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1351 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार रसुआ में 163, नुवाकोट में 193, धादिंग में 69, चितवन में 362, गोरखा में 74, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 222 और नवलपरासी पश्चिम में 220 शव मिले हैं। इनमें से 1044 शवों का आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अस्थायी रूप से सुरक्षित प्रबंधन किया गया है। शवों की पहचान के लिए मृतकों और उनके परिजनों के कुल 2376 डीएनए नमूने संकलित किए गए हैं। वहीं पहचान नहीं हो सके 1290 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पुलिस के अनुसार बाढ़ प्रभावित 13104 लोगों का उद्धार किया जा चुका है, जबकि 4996 लापता लोगों की तलाश जारी है। पुलिस प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, खोज एवं बचाव कार्य करने और बाढ़ से बाधित सड़कों को खोलने का काम भी कर रही है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि भोटे कोशी बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री और प्रबंधन में संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राहत बचाव और पुनर्वास के काम को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने सभी शक्तियों को परिचालित कर दिया है। मंत्री के अनुसार प्रभावितों के अस्थायी आवास के लिए स्कूल और अस्पताल की इमारतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दीर्घकालीन पुनर्वास की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में ऊर्जा और संचार सेवाएं जल्द बहाल कर दी गई हैं और नेपाल टेलीकॉम तथा एनसेल की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान हुआ है और शवों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। सुरक्षा बल अब भी दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत पर भी जोर दिया। रसुआ में भोटे कोशी नदी की बाढ़ में घायल 58 लोगों को उद्धार कर काठमांडू लाया गया था। इनमें से 50 घायलों को राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां इलाज के बाद अब तक 38 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में अभी 12 घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के अनुसार अधिकांश की हालत सामान्य है। बाढ़ में घायल और लापता लोगों के परिजनों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नेपाल पुलिस ने वीर अस्पताल और राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में नागरिक सहायता कक्ष भी स्थापित किए हैं। रसुआ की भोटे कोशी नदी में 10 भाद्र को आई बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों में से 244 शव त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंज लाए गए हैं। अस्पताल के अनुसार इनमें से 161 शवों का अस्थायी प्रबंधन किया जा चुका है, जबकि 24 शवों की पहचान कर उन्हें परिवार और परिजनों को सौंप दिया गया है। अस्पताल में अभी 59 शव रखे हुए हैं। इनमें कुछ का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद इन शवों का भी आवश्यक प्रक्रिया के तहत प्रबंधन किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ने के बाद सरकार ने रसुआ में हैजा विरोधी वैक्सीन और दवाएं भेजी हैं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से प्राप्त हैजा विरोधी वैक्सीन की 21,000 डोज रसुआ भेजी गई है। मंत्री निशा मेहता ने प्रभावित क्षेत्रों में हैजा और अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा, वैक्सीन, स्वास्थ्य सामग्री और आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ से पेयजल स्रोत और वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ा है। भोटे कोशी नदी में 10 भाद्र को आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को धूलीखेल अस्पताल 1 वर्ष तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देगा। अस्पताल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों पर स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक बोझ बढ़ने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम और सहयोग भी किया जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शेष खनाल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री छो ह्यून के बीच भुट्टेकोशी बाढ़ के बाद जारी खोज बचाव और राहत कार्यों तथा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। बैठक में बाढ़ में लापता दक्षिण कोरियाई नागरिकों की तलाश और बचाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री खनाल ने कोरिया की ओर से उपलब्ध कराई गई मानवीय सहायता और राहत सामग्री के लिए धन्यवाद दिया। वहीं कोरियाई विदेश मंत्री ने नेपाल के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर आवाज उठाने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। सिंह दरबार स्थित संघीय संसद भवन परिसर में जिनजी शहीद स्मारक पार्क तथा प्रतिमा और स्तंभ का शिलान्यास किया गया। गृहमंत्री सुधन गुरुंग, बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लमसाल और जिनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज के वरिष्ठ सदस्य वासुदेव जोशी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस अवसर पर गृहमंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार जिनजी पीढ़ी की मांगों को संबोधित करने के लिए काम कर रही है। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में सड़क खोलने के लिए बनाए गए ट्रैक को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। सड़क धंसने के बाद यातायात बाधित होने के कारण वैकल्पिक ट्रैक तैयार किया गया है। करीब 20 मीटर ऊंचाई और 350 मीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। सड़क परियोजना के अनुसार ग्रेडिंग, ग्रेवलिंग और भूस्खलन प्रबंधन का काम पूरा कर भाद्र के अंत तक यातायात संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच तुइन खोला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए नारायणगढ़ मुगलिन सड़क को कल सुबह से आंशिक रूप से बंद किया जाएगा। हालांकि वाहनों को समय समय पर आवाजाही के लिए खोला जाएगा। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा और नेता डॉक्टर शेखर कोइराला के बीच पार्टी की आंतरिक समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत हुई। बैठक में रसुआ की विनाशकारी बाढ़ और रसुआ, नुआकोट तथा धादिंग समेत प्रभावित जिलों की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर कोइराला ने कहा कि पार्टी की एकता बनाए रखने का कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए वे हर संभव त्याग करने को तैयार हैं। जवाब में सभापति गगन थापा ने भी खुद को पार्टी एकता के पक्ष में बताया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के माउंट अनाक काक्राटोआ में आज जोरदार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद राख का गुब्बार करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। राख के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों समेत 712 उड़ानें प्रभावित हुईं। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। ज्वालामुखी की राख हवा के साथ तांगेरांग के सुए कर्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। सिंगापुर एयरलाइंस ने जकार्ता आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी, जबकि एयर एशिया ने कई उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित की। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने लोगों को सावधानी बरतने और राख से बचाव के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अनाक क्राकाटोआ समेत इंडोनेशिया के 5 ज्वालामुखी फिलहाल अलर्ट लेवल 3 पर हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को अब पहले से अधिक तेज और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमित जवाब का दौर खत्म हो चुका है और अब खेल के नियम बदल गए हैं। गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरानी सैन्य बलों के हमलों के बाद हताश हैं। उन्होंने कहा कि हालिया ईरानी हमले केवल शुरुआत है और आगे की जवाबी कार्रवाई और तेज होगी। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को जहाजों पर जवाबी हमले हुए। एक सप्ताह पहले लड़ाई शुरू होने के बाद ये हमलों का ताजा दौर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसुआ की भोटे कोशी में आई बाढ़ के बाद अब तक 1351 लोगों के मिल चुके हैं शव। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने सभी शक्तियों को परिचालित कर दिया है, संचार मंत्री डॉक्टर तिमल सिन्हा का कथन। और इंडोनेशिया में माउंट आना क्राकाटोआ में ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण 712 उड़ानें हुई रद्द। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

बानी चिने को छोरी साए जगरने तिम्रो बानी चिने को छोरी साए जगरने भित्र भित्र माया गरी।